स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री महाराज

दाह जले, डूंगर जले, जल उठे वन राई, हम जले तुम कहाँ जले। वर कहे छे के हूँ तो बळी जाओ, पण तमे शा माटे बळो छो? कारण के हमरे पाखो नाय, अमने पाखो नथी।

महाराजनी जय, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, दिल्ली अक्षरधाम महोत्सवनी जय जय जय। सर्वप्रथम अपने सौ हाथ जोड़ी अने

श्री भगवते स्वामी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री गुणादितानंद स्वामी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री भगत जी महाराजाय नमो नमः।